अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर आपके लिए आज एक किस्म का खसूसी प्रोग्राम समझें आप, मनोरंजन से और क्या कहते हैं तफरीह तबा के लिए। साथ साथ आपको पता है हमेशा की तरह सुबह 9 में आपके लिए बड़ी दिलकश और खूबसूरत अनमोल बातों के साथ साथ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू भी चलती है। अनमोल हीरे मोती भी हम समेटते हैं, हिकमत की बातें भी होती हैं और वो दानाई और अक्लो फहम की बातें जो हमारी रोज़मर्रा डेली रूटीन लाइफ में हमें काम देती हैं, उन बातों के ऊपर भी बात होती है हमेशा की तरह। उम्मीद करती हूँ कि पूरा वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत ज़्यादा वेदर जो है वो अल्लाह तेरा शुक्र है कि हीट वेव जिसे इस कंट्री में कहा जाता है और हमारे जैसे गरीबों के लिए वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जोड़ हड्डियां जो हैं सारा साल की यहाँ की सर्दी खा के दुखते हैं, तो वो बॉडी पेन्स निकलती हैं और कुछ नहीं तो गाड़ी जो हमारी, कुछ लोग तो कहते हैं ओ हो, मैं कहती हूँ अरे सोना शावर जाने की क्या ज़रूरत है, आपको जिम में बैठ के आराम से 4-5 मिनट जितने मिनट है खुले दिल से बग़ैर पेमेंट किए आप अपनी मर्जी के टाइम पे खूब सोना शावर लें, अंदर अपने अंदर से जो पसीना है जब निकालेंगे हड्डियों को जिस्म को टकोर मिलती है, यकीन करें कि यही टकोर जो होती है हमारे जॉइंट्स पेन को जो है वो रिलीफ देती है। और आपको क्या क्या बताऊं कि इस समर के कितने फ़ायदे हैं, अगर लोगों को इसकी अहमियत का पता चल जाए तो वो घंटा घंटा उस हॉट हॉट वार्म गाड़ी से निकले ही ना। लेकिन क्या करें, फितरत है ना कुछ इंसानों की कि किसी बात पे भी राजी नहीं रहना, खुश नहीं रहना, सर्दी हो एक्सट्रीम सर्दी, गर्मी हो एक्सट्रीम गर्मी, क्या करें बर्दाश्त, दिस एंड दैट बहुत कुछ है जी। आज के प्रोग्राम में बिल्कुल एक दफा फिर रिपीट करती हूँ, प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर तफरीह तबा का आपके लिए ये प्रोग्राम जो है आयशा अख्तर इस वक्त पेश कर रही, हमारी वेबसाइट brafordationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 जी। बिल्कुल आयशा अख्तर की तरह आप भी इस हमारे ऐप को डाउनलोड करें और स्मार्टफोन में एंड्रॉयड फ़ोन में जो भी कुछ है आपका DAB पे डैब पे जाके गाड़ी में बैठें, एंजॉय करें जी, अपने आप को एंटरटेन करें और जो भी आपको सूफीज़म पसंद है, रिलीजियस, हर तरह की वैरायटी होती है जी हमारे प्रोग्राम्स की। बहुत शुक्रिया आपका हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करने का।

कि आपका फेवरेट सॉन्ग मुझे पता चल गया है आपके फेवरेट सॉन्ग्स क्या होते हैं। तो इससे पहले कि आपका फेवरेट सॉन्ग आपको सुनाया जाए, तो हमारा टॉपिक आज का, मैं कहती हूँ जबरदस्त टॉपिक, यू विल एंजॉय दैट, डोंट वरी। अब ये भी मुझे पता चल गया है कि आप सब जो हैं वो कौन सी एंटरटेनिंग के साथ साथ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन कैसी लाइक करते हैं जी, इतना तो पता चल जाता है। बिल्कुल जी, और होना भी चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए जी जनाब। हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो निज़ाम फितरत के बारे में है। फितरत एक होती है नेचर की फितरत, और एक होती है ह्यूमैनिटी, हमारी इंसानों की फितरत। वाह क्या कॉम्बिनेशन है, जब हम फितरत के कानून और अपनी तबीयत के कानून जो हैं, इन दोनों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आई होप कि आप भी जंप इन करेंगे मेरी गुफ्तगू में और मुझे बताएंगे कि आपको प्रोग्राम जो है हमेशा की तरह जो और कैसा अच्छा लग रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती जब रिलीजियस भी प्रोग्राम हो रहा होता है कि आपका ज़ौक व शौक और आपकी डेप्थ जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो है आप मुझसे शेयर करते हैं और किसी जगह पे पकड़ लेते हैं। इस पॉइंट की ज़रा थोड़ी सी वजाहत और होगी, ये हवाला आपने कहाँ से लिया और अशा अख्तर बच के कहाँ जा सकती है, आओ ना ज़रा कटहरे में, क्यों नहीं भाई, हम इस बात के लिए तैयार होते हैं कि आप हमें किसी वक्त भी कटहरे में ला सकते हैं, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आए। लेकिन जो मुझे खुशी होती है आपकी समझ, फहम और इदराक की जी। आज भी ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लाइक करेंगे, इंजॉय करेंगे और मुझे फीडबैक भी देंगे, बहुत मैं कहती हूँ ज़बरदस्त किस्म की, जो वो कहते हैं ना ह्यूमन नेचर, और एक होता है नेचर, नेचर जो नेचुरल नेचर होती है, कानून कुदरत और हमारी खुद की फितरत। ठीक है, तो आइए समेटते हैं इन सब पहलुओं को, चलते हैं प्रोग्राम को एक बजे तक लेकर। बोर नहीं होना है, मुझे भी नहीं बोर हो रहे देना, क्योंकि आपकी बोरियत जो है वो मुझे भी बोर कर देती है, और अगर मैं यहाँ पे बोरिंग प्रोग्राम कर रही हूँ तो आप तो छोड़ के भाग जाएंगे प्रोग्राम, भाई नहीं ये बिल्कुल भी नहीं करना। और आपको आयशा अख्तर हमेशा की तरह भागने का मौका ही नहीं देगी, क्या ख्याल है आपका। तो चलते हैं एक खूबसूरत से नगमे की तरफ और आप कहेंगे वाओ अमेजिंग, क्या बात है सुने, क्योंकि आप कहते हैं कि बस ये लेटेस्ट जो म्यूज़िक है उसको लेके चलती हैं। तो मैंने कहा आज जो कुछ हमारा पुराना और कीमती असासा जिसे लोग कहते हैं जी कि ये तो बड़ा कीमती असासा है, इतने वो जो सॉन्ग्स होते थे ना, वाकई बड़ा दिस एंड दैट, आप सबको पता है मुझे ज़्यादा छोड़ने की बड़ी बड़ी यहाँ पे इस वक्त कोई भी ज़रूरत नहीं, आप खुद ही जान जाएंगे, खुद ही अपनी राय कायम करेंगे। आइए एक नगमा सुनते हैं।

0: Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
3: बालियां अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काके की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
2: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER 01274 491 442,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
4: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
4: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: यू आर लिसनिंग टू
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

Website, bradfordasianradio.co.uk, or studio telephone number 01274306677. Mausam acha ho, guftugu achi ho, sunne wale jo hai mehzooz ho rahe ho guftugu se, to phir topic aisa hona chahiye madhyam, light or beautiful. कानून कुदरत, आजकल अगर आप कहीं भी चले जाएं, देखें, हम अपनी वुसत नजरी जिसे कहते हैं, इसको खोलें, थोड़ा सा दिमाग को इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लें. हम आजकल जो नेचर इतनी खूबसूरती के ऊपर है, एक आप जो है फूलों की क्यारियाँ जो हैं लगी हुई हैं, फूलों के रंग देखें, उनके ऊपर तितलियाँ मुंडला रही हैं, मौसम इतना खूबसूरत है और सुहाना सुहाना समा है, राइट. कुदरत के नज़ारे आपके चारों तरफ फैले हुए हैं, जहाँ कहीं आपकी तहद्दे नज़र देख लें, रंग बिरंगे फूल जो हैं. और अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए, अगर मैं इसी मुल्क की मिसाल ले लूँ और इस अपने शहर की मिसाल ले लूँ, और तो और अपनी गली इलाके मोहल्ले की मिसाल ले लें, आजकल अल्लाह का शुक्र है कि इतने बाज़ौक लोग हैं कि कम अज़ कम कहीं ना कहीं एक फ्लावर प्लांट जो है वो आपको किसी घर में लगा हुआ नज़र आएगा. क्या ऐसा नहीं है? और यकीन करें कि मैंने देखा है कि घर इतने सिंपल, इतने सादा, छोटे से, लेकिन जो उनको उनकी आराइश और उनको मुज़य्यन किया गया है कुदरत के हसीन शाहपारों से, और फ्लावर्स ऐसे दिलकश के बंदा देखता रह जाए. ये है निज़ामे कुदरत, ये है निज़ामे कायनात. अब इतना खूबसूरत माहौल, उसमें एक शख्स, एक मेल फीमेल किसी की भी मिसाल ले लें, कोई यंग, कोई मैंने जनरेशन को देखा है वहाँ पे आंसू बहा रहे हैं, बहुत से लोगों को देखा है, बड़े शिकवे गिले हैं हालातों वाकयात के, अपने पर्सनल लाइफ के, अपनी क्या रोना है भाई, पैसा पैसा पैसा, ये पैसा सब कुछ है, बहुत पैसा है आपके पास, क्या फिर भी खुश है? ये मैंने कभी किसी को कहते नहीं सुना कि खुशी, खुशी तो जो होती है ना वो अंदर से आपके फूटती है, कि जब आपका अंदर भी उतना ही ब्यूटीफुल हो जितनी के नेचर है. क्या ये कानून ने कुदरत और हमारी फितरत से मिलता एक कानून नहीं है? सोचिए इस बारे में, बात बड़ी गहराई की है. आप अगर ज़रा सा दिमाग पे जोर दे के सोचेंगे ना, अरे वाह, ये क्या बात है, क्या है हमारी फितरत, क्या है कानून ने कुदरत, कुदरत का जो नेचर का असूल है, क्या वो हमारा असूल जो है, उसूल वो उससे मिलता जुलता है? नेचर हमें क्या पैगाम देना चाहती है, वो क्या समझाना चाहती है, सोचना है इस बारे में. अभी सोचिए, फोन कॉल कीजिए, बताएं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझ गए होंगे. जगह जगह हर घर की स्टोरी देख लें, हर एक इंसान की स्टोरी देख लें, इतना तवील हो जाएगा ना ये टॉपिक कि आप एक एक की इंडिविजुअल स्टोरी में चले जाएं तो क्या कुछ होगा, तो क्या ये प्रोग्राम उसके लिए काफ़ी होगा? सोचना है इस बारे में, और बोर भी नहीं होना है. प्रोग्राम को अगर इसी समत ले गए ना तो बस फिर आप कहेंगे कि आयशा जी के लिए एक टिशू बॉक्स लेके बाहर खड़े, नॉक नॉक एंड टेक योर टिशू बॉक्स. नहीं, अब सुधरना है. अपने आप को भी समझाती हूँ कि देखो, वक्त है सुधरने का, वक्त है अनमोल, प्रेशियस, कीमती. इसमें छोटी सी एक बात
ज़रूर मेंशन करूंगी और आपका फेवरेट सॉन्ग आपको ज़रूर सुनाऊंगी। बुशरा अंसारी हमारी लेजेंडरी, भाई मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई नाम लेने की आई एम अलाउड और नॉट, लेकिन ये है कि अच्छी खरी सच्ची बात करनी चाहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ये होते हैं कैरेक्टर्स जो हमें मोटिवेशन देते हैं। शी इज़ 70 years old, वो खुद बताती, और उनको देखें उनका बनने संवरने का कि शी लुक्स वेरी यंग। और भी बे इंतहा मसाले होंगी आपके जहन में, होंगी हमारी फैमिलीज में, सराउंडिंग इर्द गिर्द। तो एक तो छोटी सी मैंने मिसाल इसलिए दी है कि हम भी नज़र दौड़ाएं कि खुशी किस चीज़ में है। मैंने उसके एक बड़ा मुझे अच्छा लगा वो वीडियो क्लिप, और बहुत ही खूबसूरत बात उसने कही कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खुश हो जाना। ये ज़रूरी नहीं कि मेरे पास बड़ा बंगलो हो और मेरे पास बड़ी गाड़ी, लग्जोरियस लाइफ, आसाइश से पुर आसाइश जिसे कहते हैं लाइफ, फिर भी खुशी ना मिली तो क्या। खुशी तो वो है जो आप एक छोटी सी चीज़ पे भी खुश हो जाएं, एक छोटी सी मुस्कुराहट पे खुश हो जाएं, एक छोटी सी कली को देख के मुस्कुरा उठे, छोटे से फूल को देख के मुस्कुरा उठे, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बखेरे, खुश रहे, यही है ज़िंदगी के चार दिन जी। अभी एक ये आपके फेवरेट सॉन्ग के बाद मिलते हैं, क्योंकि मुझ पे बड़ा शिकवा नहीं है, सब लाइक करते हैं, कहते हैं इस ओके मुझे मिलने का अपने हल्का अहबाब से भी, तो नहीं नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि यहाँ के बैठी है, यहाँ पे बैठ के आप कहती हैं। मैं क्रिटिसिज्म नेगेटिव हो या पॉजिटिव, देखिए क्रिटिसिज्म होती है, हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्राम्स अच्छे होंगे। तो थोड़ा सा जो वो ये जो अब मैं थोड़े से सॉन्ग सुना रही हूँ, चले एक सुनाए ना, आप दूसरा सुनते हैं, फिर और भी हम इसमें जो है इजाफा करेंगे, एडिशंस करेंगे, डिफरेंट अच्छे अच्छे आपके फेवरेट सॉन्ग जो है जो मैं पूछती रहती सुनाऊंगी। तो चलें ये आपका फेवरेट सॉन्ग सुनिए।

0: जी सामयिक राम ब्रॉडफोर्डेशन रेडियो 14:13 AM पर आशा अख्तर के संग बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम तफरीह तबा का और आप के लिए खुशियाँ समेटने का, इर्द गिर्द के माहौल से हमने कैसे अपने आप को खुश रखना है, अपने आप में रह के अपने आप को कैसे खुश रखना है, बहुत प्यारी सी बातें हैं। आपकी समझ में आ रही होंगी ये बातें, बिल्कुल जी ऐसा ही है। हमारी वेबसाइट bradfordationradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। जी बिल्कुल कॉल्स बहाल कर दी गई हैं मेरी, शायद ये होता है मुझसे समटाइम्स के कॉल्स जो हैं मैं अपनी धुन में बोल रही होती हूँ कि कॉल्स कर लें, बाद में पता चलता है कि फ़ोन कॉल्स जो है आपके लिए ऑन नहीं की, तो घबराए नहीं ऑन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल समय निक्राम बात हो रही है नेचर के बारे में और कानून कुदरत और अपनी फितरत के बारे में। जी हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लाइफ में रहते हुए इर्द गिर्द के माहौल को वॉच करते हुए, स्पेशली आप वो कहते हैं ना कि जीना जो होता है ना वो इंसान जो तखय्युलाती दुनिया में घुमा रहे या माजी में पास्ट में जो है वो, मुझे एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग भी याद आ गया तो मैंने वो लिख लिया है, बातों से बात निकली है तो वो आई होप कि आप इंजॉय करेंगे, वो गाना है ही खूबसूरत है। जी हम अपनी धुन में खोए हुए हैं, वक्त जो है वो प्रेशियस है, गुज़र रहा है और हम जो है बस कि बस जी ये स्पेसिफिक जो टॉपिक या काम या मेरी मंशा के मुताबिक मुझे ये जो है चीज़ मयसर होगी तो मुझे खुशी मिल सकती है, क्या ऐसा है कि नहीं है? आप और हम मिलके इस बारे में सोचें। नहीं फिर वही बुशरा अंसारी की बड़ी खूबसूरत सी बात कि लोग कहते हैं आपकी सेहत का राज, आप इतनी जॉली, आप इस उम्र में लगती नहीं है। तो एक ये तो मैंने एक फॉर्मल सी ऐसे एक पर्सनालिटी ले ली है चलते चलते आपको एक एग्जांपल देने के लिए, वरना आपके पास बे इंतहा मे भी नहीं, यकीनन आपकी खुद की ज़ात, अपने खुद को भी अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं भाई, हम सबको, मुझे आप सबको अपने आप को खुद को इतना अल्लाह ताला से मांगते हुए और जो कानून कुदरत के मुताबिक सेहत के हिफ्जाने सेहत के असूल हैं उन पर इस बात पे भी अभी बात होती है कि क्या हम अपने आप को यंग रखने के लिए, खुश रखने के लिए, दूसरों के लिए हम भी मोटिवेशन जो है वो फ्राहम करें, क्या अपने ऊपर अपनी सेहत का कानून कुदरत के असूलों को देखते हुए ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते? बिल्कुल हर उम्र के दौर में अल्लाह ताला ने देखे, कुदरत ने, नेचर ने हमारे लिए कितनी खूबसूरती रखी है। बस जी हम एक सर्टेन एज में पहुंच गए हैं, खुशियां हम पे बैंड हो गई हैं। ओ अम्मा ये कलर तो तुम पे सूट नहीं करेगा, अम्मा का दिल करता है तो भी करने दो ना, अस्तग़फिरुल्लाह। अब जो बातें आपके जहन में आ रही होंगी, जी बिल्कुल वही बात मेरे जहन में आ रही है, लेकिन इस बात पे कोई कदगन नहीं है, बोल देते हैं भाई बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम का क्या ख्याल है, अस्तग़फिरुल्लाह। ये देखिए बहुत शकील सा ये सेंटेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने क्या है इर्द गिर्द के माहौल, भाई वाई क्यों? हाँ ये ज़रूर है कि मौका महल का ख्याल रखना पड़ता है, बल्कि आजकल तो इस बात का जो नोटिस लिया ना सबने, बेटियां अपनी शादी के मौके पे कहती हैं अम्मा मैंने पहना रेड, तू पहले पहनेगी फिर मैं पहनूंगी, वाव। अब उन्होंने चैलेंज कर दिया न्यू जनरेशन ने, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी उनकी, के और खैर क्या बातें आप लोग कर रहे होंगे मेरा प्रोग्राम सुन के, लेकिन मेरा काम है आपको खुश रखना। एटलीस्ट आप खुश तो है ना, इंजॉय कर रहे हैं ना, यही बात है। कोई बात नहीं, मुझे पता चल जाता है आप लोग कहेंगे वाओ अब इस बारे में जो बातें निकलती हैं क्या है क्या है क्या है। इससे मुबर्रा हो के बी पॉजिटिव, हमने पॉजिटिविटी को अपनाना है, पॉजिटिव रहते हुए माहौल को खुशगवार नहज पे लेके चलना है। आप यकीन करें, बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि यूं यूं हम जो है एज वाइज आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा क्या नज़रियात, भाई ये हर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट सोच होती है। कुछ तो वही जो मैंने सेंटेंस बोला उसको कुछ कहते, देखो इतनी एज हो गई है और देखो इसको बात करने की सेंस नहीं है, इतनी एज हो गई इसको डिसेंसी नहीं है आती के डिसेंट रहते हुए, कैसे आपने डिसेंट लिबास, बस वो फीके फीके कलर, वो वाइट में ही रहना, बहुत कुछ है इस बारे में। और फिर बहुत कुछ है भाई, बड़ी उम्र को, अब खैर बच्चों के यंग जनरेशन के हवाले से उम्र के किसी भी हिस्से में हमने इससे मुबर्रा हो कि लोग क्या कहते हैं, या हमने ओवर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए अपनी पर्सनालिटी को इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए खुशगवार माहौल में रहते हुए अपने आप को उम्र का जो भी हिस्सा है उसमें एटलीस्ट इतने बावकार और बन जाएं कि हम पुरवकार किसी भी जगह पे चले जाएं तो पुरवकार नज़र आए। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? फिर ये है कि गुफ्तगू के लिहाज से तो मैं कहती हूँ कि ये तो एक वाकई, क्योंकि एक देखिए एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इट डज मैटर, ये मैटर करता है आपका, आप किसी भी तकरीब में किसी जगह के ऊपर चले जाएं। तो खैर मैं आपके साथ बिल्कुल ये फ्रेंडली माहौल में बातें हो रही हैं कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोग्राम भी अच्छा हो, मैं भी यहाँ पे बैठी बोरियत ना महसूस करूँ और आप भी ना करें। कोई मैं कोई बहुत बड़ी स्कॉलर नहीं हूँ या मेरा कोई हतमी फैसला है जी, मैंने हतमी फैसला दे दिया है, ये तो एक नॉलेज भी शेयर हो रही है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं कैसे हम कानून कुदरत जो है उसके ओल्ड ट्रीज़ अगर हम देखें तो उनका देखें क्या इम्पैक्ट है। वो कहते हैं ना कि एक घना और सायादार दरख्त उसको तलाश करो, उसके साये में बैठो, वो लॉन्ग लास्टिंग है आपके लिए, उसकी जो है एक घना, आपने देखा है ना कानून कुदरत कैसे मैटर होता है एज के ऊपर। आप सब बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरी बात, और हमेशा की तरह यही मेरा पर्पज़ होता है कि बा मकसद बात की जाए और तफरीह तबा तो आपके पसंदीदा सॉन्ग्स जो हैं जो आपकी नज़र किए जा रहे हैं, मैं पूछती रहती हूँ, वो कहते हैं हर किस्म के लेटेस्ट ओल्ड और पंजाबी तड़का और देसी तड़का, तो आप वो खैर लगाएं अभी सब देसी वैसी तड़का सब कुछ लगेगा, तो साथ साथ अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, ताकि टू मच मीठा खा लेने से क्या होता है और टू मच कड़वा खा लेने से क्या होता है, वो फिर सियानों की बात ना, इतने मीठे बन जाओ कि तुम्हें कोई निगल जाए, वो कहेंगे वो सो स्वीट शी सो स्वीट, और इतने कड़वे ना बजाओ शी इज़ वेरी बिटर। मैं आप शी की मिसाल दे रही हूँ अपने आप को, आप कहेंगे मुझे बड़ा डर लगता होता है कि कहीं कोई ऐसा कोई स्लिप ऑफ द माउथ ना कहते, भाई आपने भाई बड़ा, ये बड़ा हुनर है भाई, हुनरकारी है यहाँ पे बैठ के बात करना ना, और स्पेशली लाइव बातें हो रही हो, लाइव माहौल हो और लाइव क्रिएटिविटी हो। एनीवे वैसे ओवरऑल बात है कि इतना मीठे ना बन जाए क्योंकि आप को खा ले, और इतना कड़वे ना बन जाए कि थू थू कोई कर दे, मीडियम पेस पे भी रहे और इस यकीन करें मतवाजन सेहत अफजा माहौल में भी अपनी जात को صحت افزا کیسے رکھنا ہے. بہت سی باتیں اگر سوسائٹی کی ہم اپنے اوپر لے لیں گے, لوگوں کی باتیں لے لیں گے, اپنوں کی مار دیتی. ایسی کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ مار دیتی انسان کو, لیکن ان کو برداشت کرنا ہے. ٹاکسک پیپل کو اپنی زندگی سے کیسے ایک سائڈ پہ کرنا ہے, ان کو احساس بھی نہیں ہونے دینا, رشتوں کو کیسے بچانا ہے. میں کہتی ہوں ایک آرٹ ہے بھائی, سکسیسفل لائف گزار رہا اس این آرٹ. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
4: اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
5: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
4: ارے پگلی, اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں, دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
5: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
4: ٹاپ کوالٹی, بہترین سروس, اوپن 7 days.
5: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG. فون 01274477257. دبئی جیولرز.
4: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری.
6: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
4: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 07885-428-349. ادر برانچ, دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
4: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 pounds.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
10: Hey Gopi Dada.
0: بالکل جی سامعین اکرام, یہ براڈفورڈ ایشین ریڈیو 14:13 AM ہے, جس پر آپ آج کا یہ امید کرتی ہوں خوبصورت سا پروگرام, میں جس میں کوشش کر رہی ہوں, پوری آشا اختر پوری کوشش کر رہی ہوں, اکارڈنگ ٹو دا ویدر جو ہے, نیچر جو ہے اتنی ہمارے ارد گرد حسین و جمیل رنگوں میں چہک رہی مہک رہی ہے, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम मैं ये देखूं कि हमारी नेचर जो है, हमारी फितरत जो है, कुदरत के इन असूलों के ऊपर काम करती है. हम क्यों बोरियत महसूस करते हैं, हम क्यों सैड हैं, हमारी खुशी का राज, दिस एंड दैट, वो सारा अभी प्रोग्राम में हम करेंगे जनाब डिस्कस. इससे पहले हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk जी, और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 जी. हमें आप भी अपनी आरा, खूबसूरत आरा दे सकते हैं, खूबसूरत सी फरमाइश कर सकते हैं, और अगर आप मुत्तफिक हैं हमारी ही खूबसूरत जो इस वक्त पैकेज है, हमारे खूबसूरत पैकेज से, तो इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. आप सुने, और उम्मीद करती हूँ कि कानून कुदरत के ये सेहत अफजा कानून जो है हम अपने ऊपर लागू करें तो कितने हम खुश रहें. खुशी इस बात को ही होगी कि जो नेचर हमें पैगाम देना चाहती है, नेचर इज़ फॉरएवर, फॉरएवर, ये नोट करें बात. मौसम आते हैं जाते हैं, नेकेड हो जाते हैं ये जो दरख्त है. क्या ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन ऐसा ही है हकीकत. बिल्कुल वो जिसे कहते हैं उनका वो पत्तों वाला लिबास, फूलों का, वो सब कुछ उतर जाता है, लेकिन उन्हें पता है किसका इंतजार करते, बहार के आने का. बहार को बहार की तरह इंजॉय करते हैं कानून ने कुदरत, क्या ख्याल है. और फूल जब खिलते हैं तो पूरी खूबसूरती के साथ, उनको परवाह नहीं है कि उनको किन किस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कहां इस्तेमाल किया जाएगा. लोग इसको रोन देंगे या लोग इसकी कदर करेंगे. वो रनाइयों के साथ, ताबियानियों के साथ खड़े होते हैं. मिसाल आपको दी गई एक कादावर तनावर दरख्त, मजबूत जो है, स्ट्रॉन्ग, घना है, देता है छाव. इससे मुबर्रा हो कि उसके नीचे कौन बैठता है, कौन उसकी छाव से लुत्फ अंदोज होता है, कौन. लेकिन एक बात जरूर है, ये दरख्त भी उन मुअज्ज़ज़ और बरगजीदा हस्तियों को जो इनके साए में बैठे खुशी महसूस करते हैं. ये फिर इस्लामी प्रोग्राम फिर जब होता है, और फिर वैसे अगर इसमें भी डिस्कस करने लगें तो बहुत तवील हो जाएगा प्रोग्राम. मैं चीदा चीदा पॉइंट्स ले के आपके गोश गुजार कर रही हूँ कि हम कैसे इस नेचर को अपने अंदर समो कर, समेट कर, खूबसूरतियों से लुत्फंदोज हो सकते हैं. बिल्कुल. और कांटेदार खारदार झाड़ियों का क्या मकसद है. सियाने कहते हैं कि तुम में मिठे होन तो गिद्दड़ उजाड़ा दे विच छोड़ जान. सोचिए, ये जो मिसालें होती थी ना, तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, मगफरत फरमाए हमारी वालदा की, तुम कहते हैं कि ये इनका मकसद क्या है, हम चिढ़ जा रहे हैं बच्चों. नहीं, हमने नहीं ये सुननी बात. क्या है ऑनेस्टली कहते ना कि सियानिया दा आख्या या क्या या ते ओलिया दा खादा या बाद असर कम करदा. यही तो गल समझानी है जी. ऐ अनमोल अजी खजाना, ओल्ड इज गोल्ड. क्या हम कदर करते हैं कैसे इन रिश्तों को. अल्लाह जी, मैं जब देखती हूँ इन सारी चीज़ों को, खुदाया तूने एक एक बात हमें समझा दी, इसके बाद भी हम ना शुक्री फाबी अला रबी गुमा तो कजीबन, कैसे किन नियमतों को, कैसे कानून कुदरत जो है हमें पैगाम दे रहा है, क्या ले रहे हैं हम, क्यों फिर भी अफसरदा. और ये सोचना है हम सब के लिए, ये लम्हाए फिक्रिया है. ऐसी ऐसी मिसालें आगे बढ़ाते जाएंगे, जिंदगियों जिंदगी की रानाइयों की तरफ आए. और मेरे पास एक सेहत के हवाले से बात की गई कि हिफ्जाने सेहत के असूल जो कुदरत हमें, निज़ाम कुदरत हमें समझाती है, क्या हम उसके ऊपर अमल करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करना है, क्यों करना है. आयशा अख्तर को उतनी ही ज़बान दी गई है जितनी कि वो बोल सकती है. मज़ीद वो आगे कदम नहीं बढ़ा सकती कि आगे वो कहती खतरा है। मैं बड़ी अच्छी मिसाल देती होती हूँ कि हम जब ड्राइव करते हैं तो एक रोड के ऊपर लिखा है नो एंट्री। मैं कहती हूँ हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, हमें पता है कि ये नो एंट्री का साइन हमारे रिश्तों में और इर्द गिर्द के माहौल में, फिर उत्थे जाके क्या मैं लफज बोलूं, अड़ंगा जो भी है, आप जाते हो उस संत, तो डेंजर तो जो है उसको सामना करना पड़ेगा। ये कोई मैं वैसे मजाक की बात नहीं कर रही, ऑनेस्टली आप खुद भी सोचिए। फिर ड्राइव करते हुए हमें बड़े से देखना पड़ता है, कितना अलर्ट रहना पड़ता है। आप और मैं सोचो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ऐसा नहीं, कितना कुछ एहतियात, समझ, अकल, वक्त को कैच करना, जनरेशन को आगे लेके जाना, दिस एंड दैट। और अगर हम ये सारा कुछ टू मच एक ही गॉलप जिसे कहते हैं लुकमे में हजम करना चाहेंगे तो हजम नहीं कर पाएंगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडीली हमने कैसे जाना है। क्या ख्याल है? वैसे मुझे ऑनेस्टली मैं ऐसा कुछ बन नहीं रही हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आ जाती है अपनी बचपन की, हमारे कजन्स होते और कहते तू प्लीज छुप रहा स्कॉलर, तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी। तो मुझे लेकिन अच्छा लगता है कि मैं समझती हूँ कि ये बहुत हद तक हमारा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताना चाह रही थी, कंपनी हमारी कैसी है, हमारे अच्छे असातज़ा कराम है, सबसे पहले हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर्स, उनकी रिस्पेक्ट, बड़ों को, बड़े की जगह छोटों को, ये मैं लेके आ रही थी कि हमने प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों को कैसे देखना है, कैसे मद्देनज़र रखना है। जनाब मैं अच्छा यहाँ पर फिर बात वही आ जाती है जब मैं पोइट्री से मुझे बुरी तरह पीछे कर दिया गया कि तुम तो बहुत सेंसिटिव, तुम बहुत रोती हो, नहीं तुम इसमें तुम बिल्कुल अपना आप खत्म, पोइट्री बंद करो वो की कहते हैं। फिर दूसरा ये तो शायर ने ऐसे कहा है, तुम क्या कहती हो ये बताओ। फिर हाँ ये तो बात है, वो समझाना ये चाहते थे। और मुझे बड़े, मैं अल्लाह ताला का शुक्र, मैं इसलिए कहती हूँ कंपनी अच्छी रखें जो आपको गुड एडवाइस दें। प्रोफेसर्स, टीचर्स बड़े बड़े अच्छे माशाल्लाह, फिर इसी तरह से बड़ी बड़ी अच्छी मेरी माशाल्लाह फ्रेंड्स, ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स प्रोफेसर्स जो है मेरे आपको इतनी अच्छी पोइट्री नहीं, आप बताइए आप क्या प्रैक्टिकल लाइफ में करना चाहती हैं, कैसे आगे बढ़ेंगी। देखिए मैं इस यहाँ पे किसी को भी जो है वो बना नहीं रही हूँ टारगेट या किसी को डिग्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक अपनी नेचर के बारे में कि हम, हमारी नेचर जो है वो किस टाइप की है और हमें मशवरा कैसा दिया जा रहा है, हमारी कंपनी कैसी है, वो कैसे हमें हम सब एक ऐसी कंपनी के मरहूने मिन्नत होते हैं कि जो वाकई हमें निखार देती है, हमारे अंदर के टैलेंट को लेके आना, बाहर अपने स्किल्स को यूज़ करना। ये फिलॉसफी की बातें नहीं हैं, फिलॉसफी की नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर कहीं पे कोई मुझे कोई अच्छा कहे तो मैं कहती हूँ सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात है उसका शुक्र, और फिर अकॉर्डिंगली मुझे जिन हस्तियों से फैज़ मिलता है, आप सबको मिलता है, आप बल्कि आप अगर लाइक कर रहे हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ गुफ्तगू वही लाइक करता है जिसके अंदर खुद के ये क्वालिटीज़ होती हैं, फिर वो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखते हैं। ये भी मेरे बहुत ही अच्छे टीचर ने, वो समझ गए होंगे अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो वो हमेशा से कहते थे कि हमने क्वालिटी को देखना है, क्वांटिटी को नहीं देखना। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम कानून कुदरत के तहत कैसे अप्लाई करें, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। मेरी टॉपिक जो है मेरा इतना स्केल ना हो जाए कि आप कहें बस करो बीबी, तो एक खूबसूरत से सॉन्ग का सहारा लेते सुनते हैं और फिर आपकी फेवरेट गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, क्या ख्याल है?

जी सामाईन इकराम, ब्रॉडकास्टिंग रेडियो 1430 AM की ये तफरी तबाह के लिए पेश की जाने वाली नशरियात से आप आई होप महजूज हो रहे हैं। हमारी वेबसाइट bradfordnationradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 का नूने कुदरत पर बात हो रही हो और हम ओशन का जिक्र जो है डीप डाउन ओशन को भूल जाए, कैसे हो सकता है। सामईन इकराम, आपने बल्कि हम सब ने हमेशा देखा है समंदर, साहिले समंदर पर जाने का किसको मन नहीं करता, और ये वेदर हो, खूबसूरत सा समर वेदर चल रहा हो और जो ओशन है वो इस वक्त यहाँ पे जो है आपको पता है कितनी यहाँ पे ऐसी पानी वाली जगहें हैं। अब मैं डरती रहती हूँ कि कहीं मैं ज़िक्र करूँ तो आप कहेंगे कि जी ये क्या ज़िक्र कर दिया, वो क्या कर दिया, तो मैं बहुत कुछ है, खैर बड़े बड़े समंदर हैं दुनिया के, तो मैं इस वक्त इसी पे इक्तफा करूँगी बात की गहराई वाली बात की। क्या हमने कभी देखा है कि समंदर की गहराई कितनी है, एक नंबर वन ये, नंबर टू कि ये इतना ठाठे मारता हुआ समंदर खामोश क्यों है, मौजे इसकी शोर क्यों नहीं मचाती, या मचाती हैं तो मचा के काम डाउन हो जाती, कूल डाउन हो जाती, क्या वजह है इसके पीछे, कभी सोचा। फिर देखा है कि समंदर के नीचे अल्लाह ताला ने कितने खजाने छुपा के रखे, ढूंढने वाले बड़ा कुछ निकाल लेते हैं, मिलेनियर बन जाते हैं, क्या है, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कानून ने कुदरत, क्या हमने कभी अपनी सोचे घरेलू झगड़े, सास बहु नंदे दिस एंड दैट, डोमेस्टिक वायलेंस, एक वो जो है, अब मैं क्या कहूँ कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर हस्बैंड ऐसा हो जाए नार्सिसिस्ट तो फिर क्या होता है, तो फिर उसके लिए दुआ होती है क्योंकि ऐसे लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत इसके ऊपर भी टॉपिक रखेंगे इंशाल्लाह, ये बहुत वसी टॉपिक है। ये वो मुकैद कैद करके रखना किसी भी खातून को, बच्चों को, ये डायरेक्शंस, ये सिमत जो है कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम। बड़ी बड़ी कुतुब लिखने वाले कुतुब लिख गए, वो ये भी एक टॉपिक है। फिर समंदर खामोश क्यों है, इसकी गहराई कितनी है, बाहर से हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुदब्बर अकलमंद दाना लोग कभी आपने देखे, समंदर की गहराई सोच में होती है उनके, और बहुत कुछ दुनिया के ऐसे राज हमें समंदर की गहराई की तरह अपने अंदर जज़्ब करने होते। घरेलू जिंदगी हो, माशरती हो, समाजी हो, आपस में हो, खानदान और फ्रेंड्स, दिस एंड दैट, प्रैक्टिकल लाइफ में समंदर की गहराई और खामोशी, खूबसूरतियाँ, रानाइयाँ, प्रैक्टिकल लाइफ, कानून में कुदरत को कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कभी हमने इस बारे में सोचा, सोचना है नहीं है तो नहीं सोचा है तो सोचना है जनाब। आइए इस बहुत ही सकील किस्म की गुफ्तगू से, आप कहेंगे भाई मेरा ख्याल है अवॉइड तो नहीं करेंगे, आप लाइक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ही ऐसी गुफ्तगू के जो सोचने पर मजबूर कर दे कि हमारी पर्सनालिटीज जो हैं इंशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत खूबसूरत हो। इस वक्त सॉन्ग तो मैंने लगाना था लेकिन घड़ी की तरफ मेरी नज़र चली गई कि इस सॉन्ग को ख़राब नहीं करना है, कि ये बहुत ही हमारी एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस सबा कमर के ऊपर एक क्लिप था मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका जॉलीपन, उसका अछूता और अनोखा सा अंदाज़ बड़ा अच्छा लगा, कि वो शादी उसकी हो रही है, बिठाया हुआ है वो बड़ी चुलबुली सी, और बड़ा उसका वो है ही है, बड़ी खूबसूरत है भाई, हमारी हमारे वतन का एक सरमाया है, क्यों ना उसके ऊपर बात करें। तो वो ये सॉन्ग भी मैंने उधर उससे लिया,
और भाई हमारे आपको पता है रवायती माहौल में वो दुल्हनों को बिठा दिया जाता है कि बस हिलना नहीं है, वो बेचारी की कमर टूट जाए, बैठ बैठ के क्या हाल, आपका हंस हंस के बुरा हाल हो रहा होगा। यही मेरा मकसद है आप सबको हंसाना। वो गरीब सिर्फ, लेकिन आजकल में बहुत लोग पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये क्या वाह यार सिस्टम। लेकिन मैं बड़ी खुश हूं, क्यों निकाह पहले कर देते हैं, बाद में सारी रस्में होती हैं और हस्बैंड एंड वाइफ तो रस्में कर रहे हैं। भाई आपको क्या तकलीफ है, पहले ये होता था उन दोनों बिचारों के ऊपर वो जुल्म सितम ढाए जाते थे उनको, बस आप सोच ले और खिलखिला के हंसिएगा। ठीक है, आजकल शाबाश, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा मुझे लगता है। हस्बैंड वाइफ उनका हक है, उनका वो कहते हैं ना स्पेशल डे है, आपका स्पेशल डे है। ये किस अकलमंद ने ये ना जो इजाद की है अकलमंदी, मेरी तरफ से बिग शाबाश, ग्रेट। इंजॉय करते हैं और वाकई खैर थोड़ा सा हमें भी चहकने महकने का मौका मिल गया, क्योंकि मेरी ब्रेक के ऊपर नजर है, तो ब्रेक के बाद आपके लिए खूबसूरत सा सॉन्ग होगा और सबा कमर का बहुत ही खूबसूरत सा डायलॉग भी होगा और आप कहेंगे कि वाओ इट्स अमेजिंग, यस इट्स मस्ट बी अमेजिंग बिकॉज इट्स आयशा अख्तर प्रोग्राम, वाई नॉट जी। तो

0: the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
4: वाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, वाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
5: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
5: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
4: 33 वेटले लैंड, ब्रेडफोर्ड,
5: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

कुदरत जो है फितरत के कवानीन को हम कैसे अपने ऊपर लागू करके अपनी ज़ात में मज़ीद जो है वो खूबसूरतियाँ रानाइयाँ और अपनी ज़ात को मुदब्बर मुतहम्मल और क्या क्या बना सकते हैं, मेरा मतलब है इन अ पॉजिटिव सेंस नेगेटिविटी को दूर भगाएं और बी पॉजिटिव बी हैप्पी इंशाल्लाह। क्रिएटिविटी को कैसे और स्किल्स को जो है पॉलिश करना मज़ीद, जो ये सब कुछ बहुत कुछ कानून कुदरत ने हमें दिया है, हमने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन भी रखनी है, देखना है ये सारा कुछ चलता है। जी बात हो रही थी सबा कमर के हवाले से, बहुत ही खूबसूरत मुझे वो लगती भी है भी प्यारी, भाई हमारे मुल्क का कीमती असासा क्यों ना प्यारा हो, और वो दुबली पतली सी वो उसको घूंघट लिपटा बिटा के बिठाया हुआ उसको चढ़ाया गुस्सा और आगे वो आपको पता। देखिए मैं किसी ये मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, अच्छा सारी रीति रिवाज अच्छे होते हैं लेकिन वो बिल्कुल बेचारियों को डोमिनेट करके बिठा दिया जाता, वो हिलना नहीं है तो वो आप सब समझते हैं, मेरे से ज्यादा समझते हैं, मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। खैर उसने कहा कि भाई ये क्या है, आप लोग कोई भी अच्छा जो है ना वो कुछ भी नहीं डांस कर रहे हो, हटो परे मुझे वो सारी आपको पता है। पीछे पड़ जाती बड़ी बूढ़िया, अरे क्या करेगी ये लड़की हमारी नाक कटवाएगी दिस एंड दैट। खैर अब आप खुद ही आगे मंजर कशी कर लें कि क्या हुआ। वो कहती है कि बस डेक लगाओ, वो डेक यही लफ्ज़ यूज़ किया इसने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो खैर आए अब आगे सबा कमर की शोखियाँ, चंचलपन और एक अछूता जिसे कहते हैं और दिलों को मोह लेने वाला अंदाज, क्योंकि ये कुछ तफरीह तबाह का प्रोग्राम है, कुछ तो ऐसा थोड़ा बहुत कि अच्छा जो है चलता है। आगे अदाएं खुद उसका तखयलाती दुनिया बना ले और ये फिर सॉन्ग जो है समाप्त करें।

जी मज़ा सामीन इक्राम प्रेफरेशन रेडियो 1430 AM पर आयशा अख्तर के संग आप ये तफरी तबा का एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम जो है समात फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk, स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा सॉन्ग्स और गहरी खामोशी छाई हुई है माहौल पर। इट मीन्स के आप हमारी जो हमारी चॉइस है उससे मुत्तफिक हैं। गुड, वेरी गुड। और इससे पहले कि मैं फिर वो डीप डाउन सा जो टॉपिक है, डीप डाउन टॉक है हमारी, लेकिन वेरी इफ़ेक्टिव और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये हमारी डेली रूटीन लाइफ पे मैटर करती है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए ये बातें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। और अपनी तबीयत को खुश रखने के साथ साथ ऑब्वियसली जब एक वो कहते हैं ना कि जिसे तैरना आता है तो वही दूसरों को तैरा कर लेके जाएगा, तो जो जब अपनी ज़ात को खुश रखते हैं तो बल्कि बच्चे कहते हैं यस मॉम भी आप प्रेजेंटेबल बना करें, आप जब खुशगवार माशाल्लाह अपना अपने आप को रखें ताकि आप दूसरों को भी आपका इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी जो है वो दूसरों पर वो ब्यूटीफुल पड़े। और दूसरों को खुश रखना भी एक नेकी का काम है, दूसरों की तबीयतों को समझना और माहौल को खुशगवार पाकीज़ा रखना, अच्छा रखना, ये एक इखलाकी हमारा फ़र्ज़ भी होता है और इखलाकियात की इंतहाई खूबसूरत सीढ़ियाँ होती हैं जो हम चढ़ रहे होते हैं। मेरा ख्याल है आप इस गुफ्तगू से बहुत महसूस हो रहे हैं। और देखें जो कुदरत के कवानीन इतने ब्यूटीफुल हैं, जब हम उन पे निगाह डालेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और अपने आप में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जितना भी हम अपनी ज़ात में निखार पैदा करेंगे तो यकीन करें कि ये न सिर्फ हमारी ज़ात को खुशी देती हैं ये बातें, बल्कि हमारे घर का माहौल बहुत खुशगवार रहता है और ख़ानदान फैमिली एक कुनबा जो है एटलीस्ट देखें ये रंजिशें, ये एक दूसरे से कदूरतें कह लें, नफ़रतें कह लें, बुग्ज़ कह लें, हसद, अनाद, दुश्मनियाँ, ये अपनी जगह पे, इनको जितनी हम मैं कहती हूँ अपनी ज़ात में बेहतरी ला के हम इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं शायद ही। क्या ख़्याल है आप लोगों का इस बारे में कि बिल्कुल इन्हीं को हम ख़त्म करने की तरफ लग जाएं तो वो तो अपना आप ही इंसान ख़त्म कर देता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक वक्त लेती हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ को हम जो है नॉर्मल करने की कोशिश कर सकते हैं, बाज़ औक़ात बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। ये सदियों से ये सिस्टम, ये निज़ाम चले आ रहे और चलते रहेंगे, लेकिन हमने बेहतरी की तरफ कदम तो बढ़ाना है ना। बहुत अच्छी बात और एक बहुत ही दिलचस्प और आपकी तबीयत के मुताबिक माहौल को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा सा सॉन्ग एक बार फिर सुनते हैं। जी आइए चलते

जी मोहसा सामीन, एक राम प्रफरेशन रेडियो 1413 AM पर ये खूबसूरत सा प्रोग्राम, मैं तो कहूँगी खुद भी महजूज हो रही हूँ, अच्छी बातें भी हो रही, माहौल भी अच्छा सा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खूब जी। बिल्कुल आप हमारे साथ एक बजे तक यूं ही प्रोग्राम जो है समात फरमाते रहें प्रफरेशन रेडियो 1413 AM पर। आयशा अख्तर के संग हमारी वेबसाइट broadfordnationradio.co.uk, स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। इसलिए जल्दी जल्दी जल्दी कि एक मैं बोल रही थी कि बहुत ही खूबसूरत सा गुरदास मान जी की आवाज़ में ये सॉन्ग सुनते हैं। आई होप यू विल इन्जॉय दिस सॉन्ग।

छल्ला झांजर गानी जुगनी कोका गहने और जेड़ा मिक्स मसाला चलदा चली जान दे और रब की मर्जी विचों

0: Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
9: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
10: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

क्या बात है भाई, बड़ा इसमें अगर आप लिरिक्स पे गौर करेंगे तो बहुत ही दिलकश पैगाम गुरदास मान जी के सारे ही गाने और उनकी गजलें, गीत क्या क्या कहें कि बहुत एक जिसे कहते हैं ना कि मौसीकी की दुनिया का एक चमकता हुआ तारा है ये, और बहुत ही खूबसूरत पैगाम थे इन लिरिक्स में। अगर हम ज़ौक रखते हैं तो बाज़ौक लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत ये इनका गीत रहा है जी। चले आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के लिए। प्रेफरेशन रेडियो 1430 AM का खूबसूरत सा ये प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है बहुत दिलचस्पी से सुन रहे होंगे हमारी वेबसाइट bradfordationradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677।

जी बिल्कुल, मौसीकी की दुनिया हो या फिर कोई भी नगमा गीत। और मौसीकी में आपको पता है कि हर रंग के, हर तरंग के जो म्यूज़िक हैं वो मिलते हैं। और अगर हम आज का टॉपिक तो एक चलें छोड़ते हैं, एक साइड पे रखें और मौसम को देखें, तो ऐसे सुहाने मौसम में दिल करता है कि जो हाँ चलें आए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, के नेचर की खूबसूरतियों को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं, फिर अपनी तबीयतों का देखते हैं, कभी जो मिलान है किधर है, और समटाइम्स हमारी सोचें जो हैं वो डीप डाउन हो जाती हैं समटाइम्स। आपको पता है कि फिर यहाँ पे हमारी जो नेचर है वो कुदरत से मैच करने के साथ साथ जो है और क्या रंग लिए हुए है। तबीयतों का ये मुतलवनपन जिसे कहते हैं, ये होना या एक यकसा तबीयत के मालिक होना, या मैंने अभी बताया कि कुछ अछूते अनमोल लोग होते हैं, कुछ गहराई वाले होते हैं, कुछ चुलबुले और चहकते महकते, और फिर वो मतवाजन फिज़ा जो है कायम करने वाले लोग भी आ जाते हैं। मतवाजन माहौल, मतवाजन ग़िज़ा, दिस एंड दैट के बैलेंस रखने से ज़िंदगी खूबसूरतियों की तरफ होती है। क्या ख्याल है आपका? बैलेंस कैसे रखना है, कैसे निभाना है, और इसकी सर्कुलेशन जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट करती है हमारे इर्द गिर्द के माहौल को, ये भी देखना है। इस वक्त है पूरी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे म्यारी म्यारी और क्या कहते हैं तबीयत को खुश रखने वाले सॉन्ग्स जो है वो, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सारे अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ अच्छे सॉन्ग्स आपके लिए पेश करने को, और स्पेशली जो ये गुरदासमान के जो गहराई वाली लिरिक्स थी मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब ये जो मैं आपके लिए एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही खूबसूरत दिलकश सा सॉन्ग लेके आई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, ताकि हमारा माहौल भी खुशगवार रहे और इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम जो है एंटरटेनमेंट जो है वो मेरे ख्याल में उम्दा किस्म की रखें। तो क्या ख्याल है, बजाना होगा ये कि हम अपनी एंटरटेनमेंट को क्या कहते हैं उम्दा और म्यारी और बहुत खूबसूरत रखें। चलिए आइए ये गीत सुनते हैं, फिर खुद ही आप समझ जाएंगे कि हम आपकी तबीयत का बहुत ख्याल रख रहे हैं इन अ गुड सेंस। यस,

ब्यूटीफुल एवर ब्यूटीफुल हदीका क्यानी द बेस्ट ऑफ हदीका क्यानी इस रियली बेस्ट ऑफ हदीका क्यानी वाओ अमेजिंग ऑनेस्टली आप सबकी अपनी भाई चॉइस है आ रहा है इससे बढ़ के और क्या कहूँ कि हदीका क्यानी का हर सॉन्ग जो होता है आपने वो यहाँ पे प्रेफर्ड में आई भी थी. अरे क्या करें कि हम गरीबों को फिर आपके फिर वो सारे कहते हैं आप क्यों ऐसे कहती फिर और क्या कहूँ कि हम गरीबों की किसी ने बात ही नहीं पूछी कि अब यहाँ पे बैठ के मंजरे आम पे कहना पड़ रहा है कोई हमें भी टिकट मिल जाता तो हम भी चले जाते. खैर वो कहेंगे कि भी आप बाय भी कर सकती थी ऑनलाइन सिस्टम था बस ये जी कुछ ऐसा ही है. कैसे कहूँ कि बस कुछ ऐसा ही है. खैर मिस किया वो प्रोग्राम इसका और बहुत प्यारी हैं हमारी ये गुलूकारा जिसे कहें पाकिस्तान की और चलें सम अदर टाइम इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट. ऐसे चांसेस आते ही रहते हैं अवेल करना चाहिए स्पेशली अब कुछ न्यू ये जो इन इसके हदीका क्यानी के आ रहे हैं ये सूफियाना कलाम भी और इस तरह से अच्छे वाले गीत तो अच्छे लगते हैं. क्या ख्याल है कि ये भाई आप लोगों की चॉइस है. अगर एक मिनट दें

जी वो मैं इसका मुझे ये सॉन्ग जो है ना रियली इट्स अमेजिंग और हार्ट टचिंग अगर कहें तो कम ना होगा। अधिका कहनी कोई चलें ट्रिब्यूट करते हैं और इसका ये सॉन्ग आई होप कि आप कुछ महफिल अगर जमी है लगी है तो आइए फिर महफिल में कुछ मज़ीद शौकियाँ और रंग भर देते हैं। ये इसका बहुत अच्छा सॉन्ग है। आइए अधिका कहनी का एक और सॉन्ग सुनते हैं। होप यू ऑल विल इंशाल्लाह यू विल इंजॉय दिस। ये वेरी नाइस।

0: Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
2: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
2: बालियां अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
2: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
2: आपकी शान
1: हमारी आन,
2: क्वालिटी की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
3: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
2: सोफी ज्वेलर्स?
3: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
2: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

सबको पता है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, और कुछ कहना होता है, कुछ नहीं कहना होता, कुछ चीज़ों को डिटेल में कहना होता है, कुछ शॉर्टकट्स लेने होते हैं, और कुछ दिलकशियाँ, कुछ हसीनो जमील मनाजर, और बहुत कुछ कहने को उनके ऊपर दिल करता है, लेकिन क्या करें, हमेशा की तरह कदगन किस चीज़ का होता है, टाइम का, टाइमिंग जो होती है, टाइम फ्रेम को भी मद्देनज़र रखा जाता है। और क्या कहूँ कि जहनों को भी मद्देनज़र रखा जाता है कि ऑब्जर्वेशन कितनी है। जनाब बहुत कुछ है, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ जी। तो बहरहाल अच्छा लगा आप सब के संग ये प्रोग्राम करना, और मज़ीद क्या कहूँ कि वक्त की नज़ाकत के तहत इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ख़वातीन के हवाले से, अपने हवाले से, कि मैंने जो बेस्ट जो पैगाम जो हमारा कुरान देता है कि गफलत से जागे, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फीमेल तबका के हर वक्त शिकवे, गिले, शिकायतें, रोना धोना, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हम सब की हिफाजत करे। सिचुएशन होती है ऐसी, वाकई हालात वाकियात ऐसे होते हैं कि जिसमें चाहे बिल्स का, घरेलू मसाइल का तो एक तरफ से, और बहुत से भाई हो सकते हैं, ख़वातीन क्या सबके साथ होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हम सबको जो है आसानियाँ अल्लाह पाक अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो एक काफ़ी हद तक अपने जहन को ब्रॉड माइंड रखना, और जहन को एक वो जो फिलोसोफर्स कह लें, जो क्या कहते हैं, अच्छे दाना बीना लोग जो हैं वो कहते हैं कि एक सेहतमंद दिमाग के अंदर ही एक सेहतमंद उसके साथ जिस्म होता है। मेंटल हेल्थ को मद्देनज़र रखना, मेंटली आप जो हैं खुश भी हैं, मेंटली आप जो है आपकी सेहत मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पूरी हमारी बॉडी कैसे काम करती है। छोटा सा मैं एक टिप जो है कि वॉक जो है, वॉक वॉक वॉक, और ख़ुद पे ये कह लें कि मेरा एक पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ भी है। ऑनेस्टली भाई ऑब्वियसली मैंने वही बात करनी है जो मैं अलाउड हूँ जिसके लिए, वरना ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई फिजिशियन हूँ, कोई ऐसी मैं हेल्थ केयर यहाँ पे असिस्टेंट बैठी हूँ, या आपको कोई भी, मैं एक आम सी अल्लाह ताला की एक बंदी घरेलू खातून हूँ, और आप सबके साथ ये प्रोग्राम जो है वो सादा सी फहम में, आम फहम में कर रही हूँ। मेरा किसी भी इस शोबे से ताल्लुक नहीं है कि मैं कोई प्रोफेशनल जो है ये यहाँ पे एक हस्ती नहीं बैठी हुई कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी, और इसके लिए मैं अलाउड भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं एक अपने ज़ाती तजर्बे की बेस के ऊपर कि हम सब खुश रहें, ख़वातीन स्पेशली खुश रहें, बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए है। ऑनेस्टली आप खुद अप्लाई करेंगे जिस भी एज ग्रुप के साथ हैं आप, छोटा सा ये मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ ओनली शेयर कर रही हूँ, नथिंग रिलेटेड टू एनी प्रोफेशन और एनी हेल्थ केयर असिस्टेंट किसी टॉपिक के साथ नहीं, ऑनेस्टली, ओके। तो मैं सिर्फ अपने हवाले से बात कर रही हूँ कि मैंने जब देखा कि स्पेशली ये वेदर जो है इसमें वॉक स्टिफ हुए होते हैं, हमारे जॉइंट्स हमें हिलने नहीं देते। मुझे एक और भी खातून मिली जो ऐसे मोटिवेशनल लोग जो होते हैं ना, मैंने उससे मोटिवेशन ली, और फिर मैंने सोचा कि आगे मोटिवेशन फैलाना भी सदका जारिया है कि यकीन करें कि रोने वाली हो जाती, सर्दी की वजह से है या सोचों की वजह से, हमारा दिमाग, आप खुद इन चीज़ों को अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं आपके ऊपर कि क्या है। वो खातून कहती कि मैं व्हील चेयर के ऊपर थी और कैसे हो सकता था कि मैं उठ के वॉक करूं, और वो यूं चक्कर के मुझे पीछे छोड़ रही थी, और मैं कह रही है कि अब मैं हर किसी को पीछे छोड़ देती हूं कि मैंने डिटर्मिंड रही और मैंने अपने दिमाग को रेडी किया कि मैंने ये वॉक करनी है, मैंने उठना है व्हील चेयर से। विल पावर इसे कह लें, आप अपनी सोचों के महवर को आप
हमने ऑब्वियसली, मैंने अगर बात करनी तो एक एज अ फ्रेंड और एज अ प्रेजेंटर यहाँ पे बैठी हूँ, बात करनी है पर्सनल जाती एक्सपीरियंस जो है उसकी बेस पर. तो वो भी बयान कर रही थी खातून, इतनी वो एक्टिव और क्या कहती है कि मैंने रेगुलर वॉक नहीं छोड़ी है. और वैसे भी हमें, हम जब भी जाते हैं ऐसी हमारी हालत जो स्टिफनेस जो हमारे जोड़ जो या बॉडी एक से होती हैं, तो हमें डॉक्टर्स भी यही एडवाइस करते हैं कि करें वॉक. तो मैं कहती हूँ कभी कभी, मैं अब एक स्ट्रॉन्ग किस्म का अगर हम सेंटेंस यूज़ करें, यार क्या है इनका दिमाग ठीक है कि मैं, मुझसे चला नहीं जा रहा मुझसे, और मेरे जोड़ इतने हड्डी दर्द है और ये मुझे एडवाइस दे रहे हैं कि तुम वॉक करो. देखे मैं कोई ऑफेंसिव वे नहीं, मैं एक बात कर रही हूं, कोई अंदर से ये आवाज आती. लेकिन फिर सोचा कि कुछ तो इसमें रियलिटी है भाई. अपने आप को जिसे कहते हैं ना पुश करना, हिम्मत एनर्जी जमा करके, वाकई आप यकीन करें कि वॉक, और वॉक के वाले से कुछ एहतियातें भी मैं खुद से जो मैं समझती हूँ कि जरूरी. तो मैंने जब अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह कि वाकई सब जो लोग भी कहते हैं कि वॉक किसी भी टाइम जो भी है आपका अपना शेड्यूल और उसके अकॉर्डिंगली आप करें, और ज़रूर करें घर में एक्सरसाइजेज और अपने आप को हरकत में बरकत है जी. और यकीन करें कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसान काफ़ी इससे तरक्की पाता है. और सबसे बेहतरीन बात के बी पॉजिटिव, बी एक्टिव, बी स्मार्ट पॉजिटिव. अपने माफ़ करने का, अब ये बहुत फिर तवील टॉपिक हो जाएगा कि माफ़ करने का, आप कैसे कहती हैं हमने तो उसको भी, ये फिर अलहदा से एक टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी बात होगी. बात ये है कि पॉजिटिविटी जो है इंसान को नेगेटिविटी से निकालने में बहुत हेल्प करती है. और अपनी सेहत का अपने खुद, हमने खुद ख्याल रखना अच्छे माहौल में, और कवानीने कुदरत को अपने ऊपर लागू करते हुए कि उनका एक असूल है, उनकी एक नेचर है, उनकी एक फितरत है. टाइम के ऊपर सूरज ने निकलना है, टाइम के ऊपर गुरूब होना है, टाइम के ऊपर चांद हर महीने का निकलता है, टाइम के ऊपर गुरूब होता है. अल्लाह ताला हमें क्या पैगाम देना चाहता है, नेचर हमें क्या पैगाम देना चाहती है, ये जो आज का टॉपिक है इसको समेटते हुए एक छोटी सी मुख्तसर एंड पे ये दरिया को कूजे में मैं बंद कर रही हूं कि ये इंसान की अपनी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हालात, माहौल और वाकया से किस कदर और किस सेंस में लेसन लेता है. मावरा इसके कि लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म जो होती है इंसान को कहाँ पे किल करती है, कहाँ पे अपने इग्नोर करना है इस क्रिटिसिज्म को, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को लेके कैसे चलना. क्रिटिसिज्म अगर ना हो तो हमारे जैसे काहिल सुस्त इंसान जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, ये भी एक बात है. तो जनाब ये मेरे प्रोग्राम का महसल रहा है. तो उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा. आइए एक और खूबसूरत सा सॉन्ग समाप्त फरमाते हैं.

इकराम ब्रेफरेशन रेडियो 1430 AM पर मैं कहूँगी आज का दिलचस्प और बेहतरीन प्रोग्राम, इसलिए ऑनेस्टली मैंने भी बहुत आप सब के साथ इंजॉय किया, इस टॉपिक को भी इंजॉय किया और हालात तो वाकयात भी बहुत खूब रहे। थैंक यू वेरी मच आप सबके प्रोग्राम को सुनने का बहुत शुक्रिया। जनाब प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है, इजाज़त लेने का वक्त है ब्रॉडफेडरेशन रेडियो 1430 AM पर। इंशाल्लाह अशाख्तर कमिंग फ्राइडे आपके लिए बेहतरीन खूबसूरत सब प्रोग्राम लेके फिर हाजिर खिदमत होगी इंशाल्लाह। हमारी वेबसाइट broadfordationradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। अभी प्रोग्राम से मैं आपसे इजाज़त भी चाहती हूँ और आप उतनी देर में महजूज हों ये एक अच्छे से सॉन्ग से।

0: Full Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
10: You're listening to Bradford Asian Radio, 14:13 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio,
11: 1413 AM and online.
10: You're listening to Bradford Asian Radio, 14:13 AM and online.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: स्टोर चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
1: बालियां अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
0: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस ट्रक फोकलिफ्ट
4: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
0: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
0: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
3: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली ₹299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: You're listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
0: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

ये ब्रॉडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज़ है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पर तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और आज की इस महफिल गज़ल उसने छेड़ी की इज्जत तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुश आमदीद कहेंगे।

0: दोस्तों, मौसम का अहवाल आज यूं है कि सुबह से बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक तमाम दिन ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अभी जब मैं प्रोग्राम करने आ रहा था, टेम्परेचर तकरीबन 19 सेंटीग्रेड था। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि टेम्परेचर 22 सेंटीग्रेड तक जाएगा। बहुत ही कम शायबा है महकमा मौसमियात के मुताबिक बूंदा बांदी का इम्कान भी मौजूद है। आप सुनाइए, आपके यहाँ मौसम कैसा है, आपके दिलों का मौसम कैसा है, आपके शहर का मौसम कैसा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आमद के साथ ही हमारी मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो तशरीफ़ ला चुके हैं। लेकिन ये रिवायत है गज़ल उसने छेड़ी की कि हम आगाज़ करते हैं खूबसूरत गीत से, जिसे हम किया करते हैं अपने उन तमाम मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले और हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत और तौक़ीर बढ़ाने वाले शुरका के नाम, कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है और इसकी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफा करती है। तो आइए आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत गीत से, आप सबकी मोहब्बतों के नाम।
1: ये तो अपने कपड़े उतार दिए यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सभी नंगे हैं, देखना। कम ऑन एना, वू वू।

0: ये पसंद थी हमारे मोहतरम लिसनर रियासत साहब की हर्जशील में, और अब हम चलते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब, जिसके बाद हम आपको लिए चलेंगे मिडिल्स बड़ा ए के अली साहब के तोहफे की जानिब।
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी। बुखारी फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8।

0: PD95ER01274491442
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
2: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
3: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
2: सोफी ज्वेलर्स?
3: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
2: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 14:13 AM and online.

और दोस्तों अब हम आपको लिए चल रहे हैं मिडिलसब्रा, जहां मौजूद हैं सूफी अब्दुल करीम अली साहब। आप कलाम इकबाल के शज़ाई हैं, उनके लिए मैंने बड़ा खूबसूरत कलाम मुंतखब किया है। इस खूबसूरत शेर के साथ, नहीं तेरा नशेमन किस्से सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आपका तोहफा हाजिर है, कबूल फरमाइए इस उम्मीद पर कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आप रुबे सेहत होंगे। गुज़िश्ता चंद माह से हमारी मोहतरम लिसनर सूफी अब्दुल करीम अली साहब की तबीयत नासाज है। बहुत दिनों के बाद आज आपने हमारे बज़्म की रौनक बढ़ाई है। हम आपको दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और अपने तमाम सामईन और नाज़रीन से मुल्तमिस हैं कि दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमारे इस खूबसूरत लिसनर और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शहदाई जनाब सूफ़ी अब्दुल करीम अली साहब को अपने करम से, अपने फजल से और आपकी दुआओं से सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। सूफ़ी साहब, आमद का बे इंतहा शुक्रिया।

0: दोस्तों, ये पसंद थी हमारे मोहतरम जनाब सूफी अब्दुल करीम अली साहब की, जो हमें इस वक्त मिडिलसब्रा में सुन रहे हैं। और अब हम चल रहे हैं एक खूबसूरत गीत की जानिब, जिसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है हमारे बड़े खूबसूरत लिसनर वक़ार मियां ने, जो वेकफील्ड में इस वक्त अपने अहले खाना के हमराह माई बज़्म में शामिल हैं और निकलने की तैयारी कर रहे हैं शेफील्ड के लिए। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हम आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं, कबूल फरमाइए। आमद का बहुत शुक्रिया मियाँ, जीते रहिए।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समी पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।

साहब आप बे इंतहा खूबसूरत आवाज़ है और पसंद हमारे शकील भाई की थी। आवाज़ में सहज है, ठहराव है, जो एक अच्छी गुलकारा बनने की दलील है। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शल का, उससे पहले हम आपको याद दिला दें, आप सुन रहे हैं ब्रेटवर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से ऑनलाइन सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हम उन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। आप भी अगर हमारी बज़्म की रौनक और इज्जत बढ़ाना चाहें, हम आपको दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। कमर्शियल के वक्फे के बाद आपका पसंदीदा सेगमेंट वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग लेकर हाजिर रहूँगा, जिसमें हम खिराज अकीदत उन ख्वातीन शुआरा को जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं और खराज तहसीन पेश करते हैं उन नौजवान शुआरा को जिनकी आमद इस अदब के मैदान में अब हुई है, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। आज भी हमने एक खूबसूरत शायरा को मंतखब किया है, जिनसे मुलाकात कराएंगे हम आपकी कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद। तो इंतज़ार कीजिए, वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग है का।

0: Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूं रिफत अब्बास, आदाब उन तमाम अहबाब की खिदमत में जिन्होंने अभी अभी प्रोग्राम सुनना शुरू किया है। वक्त है आपके पसंदीदा सेगमेंट वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आज हमारी मेहमान नौजवान शायरा हैं जिन्होंने अदब के मैदान में आकर एक तहलका मचा दिया है। बे इंतहा खूबसूरत सोचो फिक्र की मालिक हैं। नाम है इनका रुबीना अयाज। आइए हम सब मिलकर इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इन्हें खुश आमदीद कहते हैं इस खूबसूरत अदबी महफिल वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग में। तशरीफ़ ला रही हैं रुबीना अयाज।
1: और मौजे सामईन अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फाउंडेशन नेपाल के सदर सर महमूद साहब और जितने भी दीगर लोग इस खूबसूरत से प्रोग्राम को बनाने में शामिल हैं उन सबको बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। जिस तरह से आप दादो तहसीन से नवाज रहे हैं और जिस तरह से सर महमूद साहब ने शायरी की उससे एक बात तो मुझ पे जाहिर हो गई कि जितनी खूबसूरती से नेपाल में शायरी की जाती है उतनी खूबसूरती से सुनी भी जाती है। तो एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें और मुझे हुक्म दें कि एक मुतफरिक शेर से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करती हूँ। शेर सुने के कुछ तहत में अर्ज़ करते फिर इंशाल्लाह कुछ तरन्नुम से आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगी। शेर यूँ है कि आतिश की आबरू हूँ मैं, डाई से भी तवज्जो चाहूंगी। आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ।
2: वाह वाह।
1: आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। मुझसे अदब से मिलिए मैं उर्दू ज़बान हूँ।
2: आहा आहा आहा। आतिश की आबरू क्या कहने बाबा।
1: आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। मुझसे अदब से मिलिए।
2: बहुत अच्छा है रुबीना।
1: बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन निजामत मारूफ भाई की। बहुत मुबारकबाद पेश करती हूं। बस जोरदार तालियां भाई के लिए।
2: बस
1: एक मतलब एक शेर यूं करें कि एक मुद्दत से अपने काम पे हूं जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूं।
2: वाह वाह।
1: एक मुद्दत से अपने काम पे हूं जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूं। इश्क का आखिरी मकाम है मौत और मैं आखिरी मकाम पे हूँ।
2: आहा आहा आहा आहा। भाई क्या अच्छा है, क्या अच्छा है।
1: इश्क का आखिरी मकाम है मौत और मैं आखिरी मकाम पे हूँ। गजल का मतलब अर्ज करती हूँ तहत में फिर एक तरन्नुम से जुड़ूंगी आपसे। जी होती है जो रगों में वो हलचल उदास है। होती है जो रगों में वो हलचल उदास है। दिल भी तेरे बगैर मुसलसल उदास है। बहुत शुक्रिया। होती है जो रगों में वो हलचल उदास है। दिल भी तेरे बगैर मुसलसल उदास है। तुमने मेरे यकीन का ऐसे किया है कत्ल। तुमने मेरे यकीन का ऐसे किया है कत्ल। जो देख करके शहर का मक्तल उदास है।
2: क्या कहने क्या कहने क्या कहने।
1: जो देख करके शहर का मक्तल उदास है। शेर बतौर खास आप सबकी जोड़ती हूँ सर सुने के ऐसी मोहब्बतों की भी क्या होगी अब मिसाल। मारू भाई सुने। ऐसी मोहब्बतों की भी क्या होगी अब मिसाल। लिपटे नहीं जो सांप तो संदल उदास है। ऐसी मोहब्बतों की भी क्या होगी अब मिसाल। लिपटे नहीं जो सांप तो संदल उदास है। मशहूर है जमाने में जंगल की खामोशी।
2: वाह।
1: मशहूर है जमाने में जंगल की खामोशी। लेकिन मेरी खामोशी पे जंगल उदास है।
2: हाय हाय हाय हाय।
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मशहूर है जमाने में जंगल की खामोशी। लेकिन मेरी खामोशी पे जंगल उदास है। गुलशन से दूर कर देंगे तकमील हुस्न पर।
2: बाँ बाँ।
1: गुलशन से दूर कर देंगे तकमीले हुस्न पर। ये सोच करके नन्ही सी कोपल उदास है। ये सोच करके नन्ही सी कोपल उदास है। तरन्नुम से कुछ अर्ज करते हुए एक मतला दो शेर समाप्त करें।
2: जी नहीं नहीं।

0: वाह वाह,
1: क्या कहने क्या कहने। को ये अंदाजा नहीं है।
2: और ये शेर की आप सब पे ताई, आप सबकी ताई चाहूंगे सफे ऊपर सफे आखिर से सुने के
1: यहाँ तो दरवाजा खुला है।
0: यहाँ तौबा का दरवाजा खुला है।

0: क्या कहने, क्या कहने।
1: अभी तो आपको देखा नहीं है।
2: बहुत शुक्रिया, आपने मेरे मिसरों की हिफाजत की। एक मतलब एक शेर और सुनने के।
1: हता है शोखी है शीरी बयान वाले हैं।
0: वाह वाह।

0: क्या
1: आपको इस घर में अपना ठिकाना ठीक नहीं।
2: गजल का मक्ता आप सबके जहमत है तमाम।

0: क्या कहना, क्या कहना।
1: महफिल से यूं उठ कर जाना ठीक नहीं राज़े।
0: क्या कहना, और सुनेंगे, पक्का सुनेंगे, यकीन है, पक्की बात है। आइए मोहतरम,
2: बहुत शुक्रिया।
0: थोड़ा सा महज़ब, थोड़ा सा महज़ब हो जाइए, एक महज़ब लहजे की शायरा को जैसे सुना जाता है। जी मोहतरम,

0: बहुत शुक्रिया
1: भाई, बहुत खूब बहुत खूब,
0: बहुत शुक्रिया भाई।
2: हाथ
1: हौसला अफजाई करते रहे, एक बार पुरजोर
2: मिलाना पड़ेगा।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत बाज़ौक सामईन, यकीनन आपने बहुत मोहब्बतों से नवाजा। दो शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगी। शेर सुने के
2: घर परिंदे से उल्फत है तुमको,
1: घर परिंदे से उल्फत है तुमको,

0: बनाना पड़ेगा।
1: और दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आज हमारी मेहमान शायरा थी रुबीना अयाज रूबी। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं लैया पंजाब पाकिस्तान, जहां मौजूद हैं हमारे खूबसूरत लिसनर सात समंदर पार से तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत व तौक़ीर बढ़ाते हैं जनाब नज़ीर अहमद साहब, और उनका तोहफ़ा उनकी नज़र कर रहे हैं। खुश आमदीद कहेंगे परदेसी मजीद साहब को जो खाड़ियाँ गुजरात पाकिस्तान से हमारी बज़्म की रौनक बढ़ाने के लिए शामिल होते हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं, और उन्हें तमाम ही सामीन और नाजरीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश किया है और एक गीत सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है जो हम ज़रूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। चलते हैं नज़ीर अहमद साहब के तोहफे की जानिब, कबूल कीजिए।

जैसा कि मैंने बताया था, हमारी बदम में शामिल हुए हैं परदेसी मजीद साहब, क्योंकि हम पाकिस्तान में मौजूद हैं और अभी लिया पंजाब में हैं। हम आपको लिए चलते हैं खाड़ियाँ गुजरात पाकिस्तान, और परदेसी मजीद साहब का तोहफा भी उनके हवाले करते हैं, ताकि एक ही मर्तबा में, एक ही ट्रिप में दोनों काम हो जाएं। आमद का बहुत शुक्रिया।

0: Soulful Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी
7: अरे बेटी शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही जेवर कहाँ लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड

0: मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
0: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
2: टैक्सी लाइसेंस,
0: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफ्रूट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
0: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
1: 33 वेटले लेन ब्रेडफ्रूट,
0: 01274201679. सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274 414 760.
1: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: You're listening to Bradford Asian Radio,
5: 1413 AM and online.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: And dosto, अब हम गजल उसने छेड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे हमराह हमारे बड़े खूबसूरत सादा दिलकश शख्सियत के मालिक मेहमान ओल्डहम से मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम रिश्वत बास भाई, आप ठीक हैं?
6: मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए कैसे हैं?
7: मैं भी ठीक ठाक हूँ।
6: अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
7: राम आपको सुन रहा हूँ
6: जी।
7: तो कुछ शायरी पेश करनी है, शायर पेश करने।
6: जी जी अता कीजिए।
7: ये हसन अब्बास रजा साहब की है।
6: हाँ बहुत खूबसूरत शायर है।
7: आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए।
6: आए, है, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए
7: लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए।
6: जाना चाहिए, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
7: वैसे हम तो घर से बाहर जाते ही नहीं।
6: आप तो रहते ही घर में हैं
7: जी। उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए।
6: वाह।
7: मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में है वो,
6: मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में है वो।
7: ये देखना रकीब के घर जाना चाहिए।
6: ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए।
7: जिस शाम शहजादी फकीर के घर में आए।
6: हाँ हाँ।
7: इस शाम वक्त को भी ठहर जाना चाहिए।
6: हाँ हाँ।
7: रबे वसाल वसल का मौसम भी आ चुका।
6: आहा।
7: अब तो मेरा नसीब सवर जाना चाहिए।
6: वाह वाह वाह वाह।
7: जब डूबना ही ठहरा तो फिर सहलों पर क्यों।
6: वाह।
7: इसके लिए तो बीच भंवर जाना चाहिए।
6: वाह वाह, बीच भंवर जाना चाहिए।
7: ये भी आ रहा था बिल्कुल। कल था मैं एक दफा डूबने लगा था तो खैर मैं बच गया।
6: अच्छा, अल्लाह ने बचा, अल्लाह ने करम कर दिया।
7: नहीं, मुझे आपको गजलें सुनानी थी ना, इसलिए बच गया।
6: अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ताला हिफाजत करता है।
7: हाँ बस वो क्या कि दरिया में नहा रहे थे ना तो पानी बहुत डूंगा था तो दरमियान में चला गया।

0: ओहो
1: वहां पर मेरा पैर नहीं लगे, बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकला।
0: अल्लाह अल्लाह आपकी हमेशा हिफाजत करे,
1: तो अल्लाह ने बचा लिया था।
0: अल्लाह का बड़ा
1: ठीक है,
0: कर।
1: मेरे नसीब में आपकी आपके साथ मुलाकात थी ना, ये तो होनी थी ना। अच्छा एक और है, डॉक्टर बशीर बदर साहब फरमाते हैं,
0: जी जी
1: हमारा दिल सवेरे का सुनहरी जाम हो जाए, चराहों की तरह आंखें जले और शाम हो
0: शाम हो
1: जाए,
0: जाए, क्या इंतखाब है।
1: कभी तो आसमान से चांद उतरे उतरे जाम हो जाए,
0: आहा
1: तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम
0: शाम हो
1: हो
0: जाए, आहा हा हा, क्या इंतखाब है।
1: अजब हालात थे यूं दिल का सौदा हो गया आखिर,
0: आहा
1: मोहब्बत की अवेली जिस तरह
0: नीलाम हो
1: जाए,
0: जाए, क्या बात है, ये शेर अता कीजिए।
1: अजब हालात थे यूं दिल का सौदा
0: हो
1: गया
0: गया
1: आखिर,
0: आखिर,
1: मोहब्बत की
0: क्या
1: अवेली
0: तस्वीर
1: जिस तरह नीलाम हो जाए,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: समुंदर के सफर में इस तरह आवाज दे हमको,
0: आहा
1: हवाएं तेज हो और कश्ती में शाम हो जाए,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा,
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: परिंदे आसमान छूने में जब
0: नाकाम हो
1: जाए,
0: जाएं, क्या बात है, ये शेर अता कीजिए।
1: मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ
0: फिर
1: होगा,
0: कहाँ होगा,
1: परिंदे आसमान में
0: आसमान
1: छूने में जब नाकाम हो जाए,
0: आसमान छूने में जब नाकाम हो जाए, वाह वाह वाह वाह,
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,
0: न जाने किस गली में
1: जिंदगी में शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम
0: शाम
1: हो
0: जाए,
1: जाए।
0: बहुत खूबसूरत इंतखाब है यू।
1: ठीक है जी,
0: बहुत शुक्रिया,
1: तो
0: और जाते जाते हम आपको
1: सलाम।
0: खाली हाथ नहीं भेज रहे, आपका पसंदीदा गीत आपके हमराह है।
1: थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया,
0: यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, अल्लाह हाफिज़।

और तशरीफ ला चुके हैं वापस हमारे मोहतरम जनाबे भगत सिंह साहब, आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल कीजिए। आमद का बहुत शुक्रिया।

0: 8:13 a.m.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
6: दुबई ज्वेलर्स। व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

और दोस्तों ये पसंद थी डॉक्टर मासूक साहिबा की। अब हम आपको लिए चलते हैं नॉर्थ हॉल्ट लंदन, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम लिसनर शहरियार साहब, और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गज़ल कलाम नौशीन गिलानी का है, आवाज़ उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब की। कहते हैं कि हमारी और हमारी फैमिली की जानिब से आपके तमाम सामईन और नाज़रीन को मोहब्बत भरा सलाम। हमेशा की तरह हम आपके प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे, और आपको और आले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तोहफ़ा हाज़िर है, कबूल कीजिए।

0: भी गा रहा हूँ और खुद भी गाता हूँ, जैसा कि मैंने तेरी यह सुना, मेरी अपनी कंपोजिशन पूरी दुनिया पे मकबूल है। गुजर गया जो जमाना, ये भी और भी जो मैं पहले गा रहा था वो भी, लेकिन जो बड़े बड़े अच्छे कंपोजर हुए मैं वह भी गाया।
1: मोहब्बतें जब

अच्छा मुझे एक एक लाइन पे थोड़ा सा शक हो रहा है लिखने में, तो मैं इसलिए वो दूसरी लाइन कह देता हूँ। दोनों में मैं ये बात करूँगा, वो जल्दी से लिखा है तो वो शक बढ़ रहा है।

और आइए दोस्तों, हम आपको महबूब इलाही के घर लिए चलते हैं, जहाँ पर वो बहुत सोफे पे टांगे फैलाए प्रोग्राम गज़ल उसने छेड़ी में शामिल हैं और इत्मीनान के साथ प्रोग्राम से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। उनका तोहफा जनाब चौधरी रुखसार अहमद शकील साहब और उनके तमाम चाहने वालों के नाम। महबूब इलाही, जीते रहिए, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए, आमद का बे इंतहा शुक्रिया।

दोस्तों, ये अपने चाहने वालों के नाम महबूब इलाही साहब का तोहफा था, और अब हम चल रहे हैं अपनी उस प्यारी सी बहना की जानिब जो हमें ढेरों दुआओं से नवाजती हैं, और हम भी उन्हें ढेरों दुआओं से नवाजते हैं। शहनाज ब्रेडफोर्ड 18 में, बिटिया हमारी ढेरों दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इस दुआ के साथ जो तुम सुनना चाहती हो कि अल्लाह तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे और बच्चों की बहारें दिखाए। तुम्हारी पसंद लेकर हाजिर हैं। मुझे पता है बेइंतहा मसरूफ़ रहती हो, लेकिन तुम भाई के प्रोग्राम में आ ही जाती हो। हम तुम्हें दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए तुम्हारी बचपन की हसीन यादों में लिए चल रहे हैं। ये हमारी खूबसूरत सामे हैं जो हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी बचपन के गीत शौक़ से सुनकर बचपन की वादियों में घूम आती हैं। हाजिर हैं, कबूल करो, जीती रहो।

0: Ja, ey.
1: No, please.

और दोस्तों ये पसंद थी हमारी बहुत ही प्यारी सी बिटिया और उनकी कजन्स की, सुमेरा जीती रहो बेटा। और दोस्तों मैं घड़ी की जानिब देख रहा हूँ जो इशारा कर रही है कि अब प्रोग्राम के अख्तिताम का वक्त करीब आन पहुँचा है। सो मैं बे इंतहा शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन तमाम अहबाब का कि जिनकी आमद ने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए, इसकी इज्जत व तौकीर में इजाफा किया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, नज़रे बद से बचाए और सेहत से रखे। अब प्रोग्राम का आखिरी तोहफा रियाज साहब का ये होता है जो आगाज़ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ाते हैं, लेकिन तोहफा हमेशा वसूल करते हैं प्रोग्राम के इख्तिताम पर। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल एक मरतबा फिर ये खूबसूरत महफिल गज़ल उसने छेड़ी सजाऊंगा। हमेशा की तरह आपके मनपसंद मन भावन ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो पर 1413 मीडियम वेव पर और दुनिया के चार कोनों में ये खूबसूरत पैगाम पहुंचाते हैं हम अपने ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोहब्बतों के पैगंबर रिफत अब्बास को अब इजाज़त दीजिए। आपका हमारा हम सब का अल्लाह हाफिज़ो नासिर। रिया साहब मैंने अपनी दुआओं याद रखो।

0: 14:13 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
8: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
9: You're listening to Bradford Asian Radio, 14:13 AM and online.

0: listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
6: वाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, वाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट
9: टैक्सी लाइसेंस,
7: हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX। फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीराज थी कौसर उन्हें पानी ना मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: The Hindi Urdu Music Show on Bradford Asian Radio.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
8: दुबई ज्वेलर्स। व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
2: और हर सूर
1: दिल को छो जाए,
3: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
4: लिंक एफएम।

0: Sheffield's Link FM.
1: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ
2: Link FM Sheffield.
1: हर धड़कन की आवाज है Link FM, मोहब्बत भरा अंदाज है Link FM, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है Link FM, दिल से आपके साथ
2: Link FM.

0: ओए, सारा दिन गाना सुनता रहता। पसंद रसूख हुआ है?
1: दादाजी, दादा सुनो पेजने, दाखो अली जफर दे।
0: हाँ, होगा भाई, हमने गाना वाला बड़ा देख। हम तो तब मानेगा जब हमारा जुबान मिलाएगा।

0: Soulful Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काकी की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
4: तुमसा कोई दूसरा इस जमी पे हुआ तो रब से शिकायत होगी तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले का

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: are listening to Bedford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रैडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
6: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
9: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
5: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
6: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
5: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
6: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
5: 07548419678।
6: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
8: You're listening to Bradford Asian Radio,
9: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio,
8: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Grateful Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काकी की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

हुजूर अब आए कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं करूं क्या ये मेरे समझ में ना।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

इनको भी है मेरा खुमार, इनको भी है इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो, वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

उम्र यकी अब कम सही हा, हा। मैं सादा दिल मुझे जिम सही हा, हा। इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा।

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काकी की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: You're listening to
4: Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔
1: کلک آن asianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
3: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
4: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
3: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
4: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
3: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
6: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
7: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
8: You're listening to Bradford Asian Radio,
9: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627.
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
6: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
6: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
5: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
6: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
6: दुबई ज्वेलर्स। व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब लिए एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.